अवश्य नादर दे दिए तरादो नायन तोले नजारा दिल दे हाय तो दवाने गंगा दे नमन्याय.